0: हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: More from our correspondent Shubhashree Mohapatra covering President Murmu's North Macedonia visit.
2: The President said the India-North Macedonia Business Forum will provide a valuable platform to strengthen economic engagement. President Murmu also announced that India will double the number of ITEC training slots for North Macedonia, including courses in artificial intelligence. She welcomed North Macedonia's intent to join global initiatives led by India, including the International Solar Alliance, the Coalition for